क्या में गहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। जदू ए खालसा पंडतां दियां रीतां ते तुर पिया भाव अपने असूलां तो जदों ए पिछे हट गया ते फिर ए दे विच मेरा तेज नहीं रहेगा, फिर इन्हां दा राह वखरा ते मेरा राह वखरा होगा। मैं खालसे दे विच उदों तक हां जदों तक खालसा मेरे असूलां ते रहेगा, ते जे इन्हां दा असूल कोई नहीं ते फिर ए मेरे कोई नहीं। आखो सतनाम श्री, क्योंकि गुरु साहिब जी जो कहिंदे हन पहला ओ ते फिर रहतनामे संसार दे विच। पीर पैगंबर ते बड़े हुए, पीर पीर रहे, सेवक सेवक, भगवान भगवान रहे, पुजारी पुजारी, पर गुरु नानक दे कार गुरु चेले बन गए ते चेले गुरु बन गए। आखो सतनाम श्री वाहे। और इत्थों तक क्या

मरूं जे रस ना पाऊं, मेरे शरीर ते जिन्ने रोम ने एक शरीर ते करोड़ा रोम होंदे ने। जिहड़ा साडा शरीर है करोड़ा रोम होंदे हन हर बंदे दे शरीर ते। ते साहिब जी कहिंदे ने इह जिहड़े मेरे शरीर दे रोम ने करोड़ा रोम, ये सारे जीव बन जाए। रोम रोम जे रसना पाओ तदप खालसा जस तैगा। इतनी वड्याई दीती, मेरे शरीर ते जिन्ने रोम ने ये सारे जीव बन जाए ते इना करोड़ा जीवां दे नाल मैं खालसे दा जस गावा। आखो सतनाम श्री वाहे। ये वड्याई दे रहे।

ते किसे ने पूछया, महाराज तुसी कहंदे हो सब कुछ खालसा है, जे सारा कुछ ही खालसा हो गया ते फिर तुसी ते गुरु साहिब जी।

इतनी बड़ियाई दी थी और इतों तक चले गए। कहन लगे खालसा मेरी जान की जान। और इस तू पहली पंक्ति खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। पिंड कहंदे ने शरीर नू, खालसा मेरा शरीर है, खालसा मेरो पिंड प्राण, और खालसा मेरे प्राण है, और खालसा मेरी जान है। खालसा मेरा मां बाप है, खालसा मेरे भैन भरा है, खालसा मेरे रिश्तेदार, और खालसा मेरा सज्जन मित्र है। और इथों तक कह दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सारा इतिहास पढ़िए, उन्होंने किधरे कसम नहीं खाधी। पर जद खालसे की गल आई तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे वास्ते एक कसम खाती। की कहते हैं, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नु साखी रूप जान के ये कहना कि खालसे विच अकाल पुरख विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं।

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों यह भरमां विच वहमां विच पै गया गुगे जठेरे मनन लग पिया मड़ी मसाणी मनन लग पिया इहदे मन विच द्वेष आ गई इहनूं इह पता लग गया।

कोई गरीब है, गरीबी घर विच एडी एडी है कि अपने मोढ़ियां तो भी उची हो गई है। ये जो गोलक है, ये गुरु घर की जो माया है, ये इना गरीबां वास्ते, मजलूमां वास्ते, लंगर वास्ते, जो पीड़ित लोग हन, ये सत्संग जीओ, ये जो गोलक है,

0: DM Music पेश कर देने शब्द गुरबाणी गुरु रामदास राखो सरनाई
1: गुरु रामदास राखो सरनाई
0: भाई किशन पाल सिंह जी दी रस

बहुत प्राचीन मधुर और परमुख रागों विचों एक है। इस विच ऋषव अते धैवत अति कोमल अते होर सुर शुद्ध लगते हैं। वादी स्वर धैवत अते संवादी ऋषव है, इसके आरोह अवरोह विच सत सुर लगते हैं। अमृत वेले तो पौ पटाले दे समय दौरान यह राग गाया जाता है। इस राग की मधुरता ऋषव अते धैवत दे उचित प्रयोग ते निर्भर है। भैरो दा वातावरण अति सुहावना हुंदा है, प्यार उपजाऊ है। इस राग विच भगत प्रहलाद जी की कथा का जिक्र गुरु साहब ने विस्थार नाल कीता है, जिसने हरनाक्ष दा हंकार भन्निया। गुरु दी करनी बारे फरमान है, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। इत्थे ही नामदेव जी दी सूरमताई दा भी जिक्र है, जिन्ना मां नूं कह दिता सी ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। बीबी जसविंदर कौर जी पासों शब्द सरवण करो, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अते दूजे शब्द दा गायन कर रहे हन भाई रविंदर सिंह जी। शब्द है माथे तिलक हथ माला बाना। पहला शब्द गुर जैसा नाही को देव,

गुरमुख बिरलै जाने। ये पंक्ति जिस विच सारे शब्द का केंद्री भाव है, भगत जी दसदे हन कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करके नाम सिमरदा है

सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेत हैं। यू टेक वन स्टेप टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, वाहिगुरु परमात्मा। टेक वन स्टेप टूवर्ड्स हिम एंड ही टेक्स अ मिलियन स्टेप्स टूवर्ड्स यू। यू डू सेवा इन हिज नेम, डू चैरिटी इन हिज नेम एंड ही रिवॉर्ड्स यू 1000-fold. You repeat his name again and again, and he will always be with you. Nanak, Bhagavad Gita says, I repeat his name again and again, and I never get tired of repeating his name. Satgur Dayanid, Mehma Agad Bodh, Namo, Namo, Namo, Namo, Neth, Neth, Neth hai.

अपनी शक्ति नाल ओ जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ी

जिस वेले भगतियां ने तकिया भी जिदे विच लोग माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतियां नू ओ भगत पाउणी भुल गई ना उताल रहा ना उराग रहा।

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते उथे दे पीरा नू पता लगा के वड्डा पीर आया एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उन्हां ने अपने एक सेवक नू अपने चेले नू एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इथे तेरी लोड़ ही नहीं इथे अगे पीरा नाल भरिया पिया तेरी की लोड़।

0: बिन सुंभु न हो। ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो। ओ गुरु बिन ज्ञान न हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता
2: आसरा उस आधार का मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोरे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं थोड़ी को हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता
4: यह मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी आगे कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी के दरख्त भी बेअंत
4: नहीं। बाबा जी आज बेरी ते इको ही होगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागो हंस करे
2: कागो हंस करे कागो हंस कर। यह तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उथे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल ले जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्थर है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने
2: परमेश्वर भली करेगा।

0: वीर सेवा को दोए भले। एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
1: उठ परी दायूज सार सुबह नवाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कफ उतार, जो सिर साई ना निवे सो सिर की देखाए, उन्ने पैठ जलाए बालन संदे थाए, बालन संदे थाए।
2: ओ साथ जी की गल है पहला तुसी ने कहा दिता?
3: असी किस तरह जानते, सोचदिया पहले पूछ लिया हुंदा।
2: की पूछना सी?
3: सारे मुसाफिर ने तुहाडी सेवा कुछ ना कुछ भेंट किया है, पर असी साडे कोल ना दिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
2: हो चलिए पहले, मैं कोई कम कमाइया नहीं तो नहीं करता, मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
3: फिर भी तुहाडियां लोड़ां?
2: मेरिया लोड़ां तो खुदावंद पूरियां करता है, तो होर मैनूं चाहिदा की जो कुछ मैं लोग दे जाते हैं जाके गुरु के दरबार च चढ़ा दिना, दिन वेले बेड़ी चलाना तो रात लंगर चो ढिड भर के बाहर थले दसो जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नहीं।
3: तनु तुसी
2: तन ते मैं नहीं पैना, तन तो गुरु महाराज जरा सब नू अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलांदा है, और दर ते जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया उस अवगन हारे नू इस पाव सागर तो पार उतारो।

चारे पासे सुगंधी फैल गई है। मेरा मन कहिंदा ए कोई साधारण बालक नहीं है, ए तां कोई परमेश्वर दा उस अकाल पुरख वाहेगुरु दा कोई रूप ही तुहाडे घर आया है। साथ संगत बोलो श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रात्रि दे तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लिता। मैता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक होया ते मैं चाहना हां उसकी जन्म कुंडली तैयार करो। पंडित हरदयाल उठ के बैठा, मेहता जी नू बिठाया कोल, कालू जी नू मेहता कालू नू कोल बिठाया, पुछया कितने बजे होया बालक, आखे तीसरे पहर दे आरंभ विच। जदो पंडित हरदयाल ने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल सारी जन्म कुंडली दा हिसाब बढ़ा के तैयार कीता ते जदों लिखण लगा ते कलम रुक गई। कहन लगा मेहता जी जे मैं लिखदा हां तां मैनूं समझ नहीं आउंदी कि मैं ठीक लिख रहा, क्योंकि और नहीं लिखदा तां मैं ए वेखदा कि मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए तां परमात्मा दा रूप है। साथ संगत बोलो श्री ए प्रभु दा रूप है। मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मेहता कालू नू वधाइयां मिल रही हैं कि अज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर गया है। प्यारी साध संगत आ बालक पता है कौन है? ए बालक आप नारायण कला तार जग में परवरे हो, आप नारायण दा

राय जी ने पछाण लिया ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता? आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सा, मैनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मेहता जी जदों आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां आ दूजे दे खेत विच छड़ के सारा खलियान खेत खराब कर दिता। एदा हरजाना पर भई तेरा पुत्र है ना नानक। मैं ता कालू कहन लगा ए ता है ही निखट्टू, कोई कम कार नहीं करदा, वेले बैठा रहंदा है। एक काम इस नू करन वास्ते भेजा सी, ओ भी उजाड़ के आ गया। क्यों नानक इवें क्यों कीता? मैं ता कालू ने जदों पुछया ते गुरु नानक सच्चे पातशाह बाल अवस्था विच कहन लगे पिता जी इदे खेत नू ता कुछ होया ही नहीं, ए इवें आके इत्थे शिकायत करन आ गया। इदी खेती नू कुछ नहीं होया, इदी खेती ता उसे तरह लहलला रही है। सत सगत बोलो श्री हरी परी है। ओ कहिंदे नहीं मैं अपनी अखां नाल वेख के आया, चलो मेरे नाल। ते सारे जदों इकट्ठे होके उत्थे पहुंचे।

खाना ले देता आखिया इथे बैठ के हुण दुकान करेगा ता इसका चित दुकान विच लग जाए। साहब जी दुकान ते बैठ गए, किरियाने दी दुकान है, जो कोई लोड़वंद आउंदा है चोली अगे करदे गुरु नानक ओदी चोली भर देंदे। एक दो तीन चार पांच जेड़ा आई जाऊंदा गुरु

है ना ओ मैं जप रहा हूं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। हे निरंकार तू आद विच भी सच है जुगाद विच भी सच है हुण भी सच है ते सदा तेरा नाम सच ही रहेगा। ए उपदेश लेता इत्थे गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों वेही नदी विचों बाहर ना निकले मर्दाना डरिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह किथे गए। बाला भजिया बेबे